ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज, यहाँ सब चरित्र मैंने कहा, अब अगले कथा मन लगाकर सुनिए। महर्षि विश्वामित्र माँ ज्ञानी मन में सिद्ध पीठ आश्रम में वास करते थे।
1: We glorify the Guru.

लतीफा याद आ गया है। इसी तरह एक गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रब की आवाज आई, तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रब की आवाज आई, तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रब की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रब की आवाज आई, तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

मेरा दिल कह रहा है, मैं सर से लेके पांव तक तेरे संदली बदन पे मोहब्बत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है, मैं तेरे सुर्ख लरसते होठों की लाली पे अपने लबों की शबनमी शरारत लिख दूं। हाँ, मेरा दिल कह रहा है, तेरी पाजेब की झनकार पे, तेरे बाहों की चंदन हार पे अपनी बेचैनियों की हालत लिख दूं। मेरा दिल कह रहा है, तेरे उलझे गेसु सवारों, इन आंखों के आईने में तेरा दुल्हन सा रुख निहारूं। इस महकती जमीन की सेज पे अपने अरमानों की चाहत लिख दूं, मोहब्बत लिख दूं।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

सत्य सनातन धर्म की जय जय शरण। सबको यासन पर बैठे हैं। मेरा भाग्य सिंह मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल।

0: सब कोई बोलो,
1: जय राम श्री राम जय, ब्यूटीफुल जय राम, लिटिल मोर लव जय, डोंट लुक एट मी, लुक एट भगवान, राम जय जय जय, क्लोज योर आईज एंड सिंग फॉर श्री राम.